तब कत मूंड लुकई है। हुण तेरा सोहना मुख है, सोहनी रसना कुदरत ने दिती है नाम जपण वास्ते, ते जे कदे तू पशु दी जून पै गया ते फेर पाई। चार पाव दोए सिंह गोंग मुख तब कैसे।

एक अनक लख बरिया अन थोर नहीं जह जाता। चंचल मत चंचल मत बारक बपुरे की सर्प।

जाके जीपा सो क्यों विसरे जे काल न पाने सो क्यों विसरे जे किया जाने सो क्यों विसरे जे

सलल निवास जैसे मीर की ना कटे रुच, सलल निवास जैसे मीर की ना कटे रुच, दीपक प्रदास कटे प्रीत ना पतंग की, उस सुभास जैसे त्रिपत ना मध्यप को उड़ते आकाश, आस कटे ना बिहंग की, कटाखन को

मैं बंदा बेखरीद सच्चा है मेरा, मैं बंदा बेखरीद सच्चा है वो मेरा, जो पिंड सब तिसका सब कुछ है तेरा, माने ने माने तू तने तेरा परवासा, बिन साचे अंतिक है तो जानू काचा।

सुरबिन दूजा और न कोई तेरा खेल अखाड़ा जियो सुरबिन दूजा और न कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। क्या कहिए किस आस सुनाइए जो कहना सब प्रभु जी पास सब कुछ किता तेरा वरते सदा सदा तेरी आस जी दे वडियाई ता तेरी वडियाई

जन को तब अपने कतान जो तू करे करावे स्वामी हा मतलब परवा चरण शरण हम अनाथ ना फर्तन अपनी कृपा करे चरण कमल नानक आला दे किस दिन आम के पत परमेश्वर गत मरायण तन गोपाल गुण साखी।

मध्यन होत साधु तुरे आवण जानू रेखित पाई जन मरण के मिटे वसूरे गुरु नारायण दुरु गुर सच्चा दिन हार गुर तुठे सच पाया जन मानस सब बनिहार।

गुरु की साथ संगत भाव साहिब गुरु रामदास पातशाह दे उच्चारण कीती हुई शब्द दे रूप विच पड़ताल हर गुण गावो जगदीश राग कांडा और शब्द धन साहिब से गुरु रामदास पातशाह जी।

साहिब श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं हिंद दी चादर क्यों आखिया गया? इसलिए उन्हां नूं हिंद दी चादर आखिया जांदा है। तेग बहादुर साहिब पातशाह ने उस वक्त अपनी कुर्बानी दिती जिस वक्त के इस हिंदुस्तान नूं बचान वाला कोई भी नहीं सी। उस वक्त गुरु तेग बहादुर साहिब पातशाह ने उन्हां मजलूमा दी बांह फड़ी ते हिंद दी चादर कवाया। अला यार खां जोगी ने बड़ा सुंदर करके लिखिया।

करती है। ऐ मनुख तू चेते कर, माता के उदर में प्रतिपाल करे। सो क्यों मनो विशारिये, मनो क्यों विशारिये, एवड दाता जो अग्न में आहार पहुंचावे। ओ वेला याद कर, शेर तले पांव ऊपरे, वसंदो कोहतड़े थाए। नानक सो तनी क्यों विशारिये, उदरे जिसके दाए। ओ समा चेते कर, जदों तू पुठा लटकिया होया सी, ते कितनी माड़ी जगह ते कोहथड़े थां ते तू लटक रिया सै, जिथों मल मूत्र लंघ रिया सी, उस वेले तू अरदास करदा सै, हे निरंकार मैनू इस कुंभी नरक विचों कढ़, मैं तेरा सिमरन करांगा, तेरा नाम जपांगा। ओए तैनू क्यों भुल गया ओ वेला, तू क्या सी मैं अमृत वेले गुरबाणी गासा, सत संगत बह के हर नाम दिया सा, तू भूल गया वह दे पै गए हनेरे। ओए सुन मन गाफल, पल पल करके तेरा जीवन घटता जा रहा है,

0: तेरे राग है, तेरे राग है।
1: जो भीख मंगावे तो क्या कट जाई, तू हर पज मन मेरे पद निर्वाण। बहर न होए तेरा आवन जान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मानयोग साध संगत जीओ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन बाणी अंदर समुची मनुखता दी जीवन कल्याण दी गल कीती गई है। गुरमत इस ख्याल नाल सहमत नहीं कि संसार विच दो चार बंदे जड़े ने वो उच्चे सुचे पवित्र जीवन वाले हो जान, ते बाकी दी दुनिया उसे तरह कीड़िया मकौड़िया वांग जमदी मरदी रहे। गुरमत इस आशे नूं प्रगट करदी है कि सारा संसार जड़ा है इस दे उधार दा बंदोबस्त वाहिगुरु अकाल पुरख ने कीता होया है। इसे आशे दी व्याख्या बाणी विच कीती गई है। बड़े चिर तों मनुख दे सामने यह समस्या है कि यह जड़ी दुनिया दी दौलत है, संसार दी माया है, इहदे नाल मैं किवें वरतना। ते धर्मी तो लोग आम तौर ते गल कहिंदे ने कि जिन्ना चिर इहनूं छड्डोगे नहीं उन्ना चिर रब दे नाल ते जोड़ ही नहीं सकदे। जदों गुरमत नूं चंगी तरह समझने आ तां इह गल साडे पल्ले पैंदी है कि गुरु साहिब ने इस माया नूं त्यागण दा कोई उपदेश नहीं दिता। गरीबी है या अमीरी, थोड़ी माया या बहुती, इस गल दा सवाल नहीं है। सवाल यह है कि माया दे हुंदिया होया उस वाहिगुरु अकाल पुरख नाल अपने चित नूं जोड़ना। भाई साहब भाई गुरदास कहिंदे ने, कहिंदे ने गुरसिख जोगी जागदे माया अंदर करन उदासी। आंदे ने गुरसिख योगी हन, ऐसे योगी के माया विच रहिंदे होए भी ओ चितन ने जागदे होए ने समझदे ने कि इस माया ने साडे नाल नहीं जाना। वो कहिंदे ने कि यह माया परमात्मा ने बनाई है, माया तो उसने संसार बनाया है, इसलिए किते भी मनुख चला जाए मनुख दा शरीर मनुख दी अपनी होंद भी माया नाल है, माया दा पिछा नहीं छड़दी, माया तो बिना यह संसार हो नहीं सकदा। इस करके गुरु साहिब ने कहा इनू नफरत करन दा कोई मतलब नहीं, यह परमात्मा ने बनाई है। गुरु अमरदास पातशाह ने श्री राग विच एक बचन कीता है, सतगुरु कहिंदे ने माया मोह मेरा प्रभ कीना आपे भरम भुलाए। बाणी नूं जदों ध्यान नाल पढ़ीए साडियां कई समस्या हल हो जांदियां, पर असीं बाणी वल ध्यान नहीं दिंदे, बंदियां वल ध्यान दिंदे। मुश्किल साडी आए कहिंदे फलाणा बाबा कह गया, बस स्यापा पै जांदा सानूं। गुरु ग्रंथ साहिब गुरु तुहाडे कोल मौजूद है, उस नाल गल करके पुछ के वेखो कि गुरु साहिब की कहिंदे आ। बंदा गलत हो सकदा पर असीं बंदे दे मगर लगण वास्ते तैयार हो जांदे आ। साहिब कहिंदे ने माया मोह मेरा प्रभ कीना आपे भरम भुलाए। मनमुख कर्म करें नहीं बूझें बिरधा जन्म गवाए। गुरबाणी इस जग में है चानण कर्म वसै मन आए। गुरबाणी की रोशनी नाल यह गल साडी समझ विच आ जाएगी, पता लग जाएगा कि असा संसार दे अंदर इस माया विच रहिंदे आ किस तरह उस मालक नाल अपनी सांझ पाउणी है। इसे करके भगत जी का बचन जो कीर्तन द्वारा सरवण कीता है, कहिंदे ने तू हर भज मन मेरे पद निर्वाण, बहुर ना होए तेरा आवण जान। कहिंदे ने हे मेरे मना तू उस वाहिगुरू अकाल पुरख नू चेते कर जो आप निर्वाण पद दा मालक है ते तैनू उस अवस्था विच लै जाएगा तेरा जमन मरन कटिया जाएगा। ए केंद्री ख्याल है शब्द दा ते उह कहिंदे ने भी किसे कीमत उत्ते भी तू परमात्मा नू नहीं छड्डना। जिस वेले त्रिलोचन ने नामदेव नू कहा मैं सुनिया तू भगत है कादा भगत है तू ते हर वेले कपड़िया च लगा रहिंदा कदी धोना है कदे छापदा है कदे कुछ करदा। वो कहन लगा ठीक है मैं काम करदा हां लेकिन भाई काम करदिया होया मैं उस मालक नू चेते करदा रहिंदा भुलदा नहीं मैं उन्हू याद करदा रहिंदा वा। हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन नाल मैं चंगे तो चंगा कपड़ा भी हाथ विच लैके कदे ए नहीं सोचदा कि कपड़ा ही सब कुछ है। मैं उस वाहिगुरू अकाल पुरख तो सदके जाना भी जिसने ए सुंदर कपड़ा बनाउण दी विध बनाई है। मैं सुंदरता देख के भी उन्हू याद कर लैना मैं मुसीबतां देख के भी उन्हू याद कर लैना हर हालत विच उन्हू याद करन दी गल मैनू विसरदी नहीं। इसे करके कहिंदे ने जो राज देहे तां कौन बढ़ाई जो भीख मंगावे तां क्या घट जाई कहिंदे ने भिख्या मंगाएगा तां भी तैनू चेते करदा रहना ते ये याद राज दे देगा मैं तां भी तैनू चेते करदा रहना। ये नहीं कि मैं राज दी वडियाई विच पै जाणा ते समझना भी सब कुछ राज ही है ते भिख्या मंगावे ते मैं तैनू गाला कढ़न लग पावां भी तूं कहदा रब मैनू दित्ता कख नहीं। वो कहिंदे नहीं किसे हालत विच भी मैनू रखे मैं मेरा कम है तैनू चेते रखना तैनू याद करना। इतिहास की एक वार्ता है सतगुरू गुरु हर राय साहब के इतिहास की। उन्होंने एक सिख होया बड़ा गरीब जिहा सिख सी किरती किसान भाई पूंगर करके इतिहास ने उहदा नां दिता है। खेती करदा मिहनत पर गुरु साहब के दसे उपदेश के मुताबिक अमृत वेले उठदा नाम जपदा बाणी पढ़दा फिर अपनी किरत विच लग जांदा। कोई अतिथि आवे आया गया लोड़वंद कोई जग्यासु आवे वह सेवा करदा ते एक चलदा फिरदा साधु भी आ गया बड़ी सेवा कीती उसने बड़ा प्यार कीता ते उस साधु दे मन विच ख्याल आया कि इस बंदे कोल दौलत नहीं है पर प्यार सेवा हमदर्दी मनुखता दा सब तो उच्चा गुण जो किसी दौलत नाल प्राप्त नहीं हुंदा इस मनुख दे कोल है ते मेरे कोल पारस है जो सोना बना सकदा है धात नूं ते इस नूं पारस दे देवां इहदे कोल अमीरी दौलत आ जाएगी ते होर भी वध सेवा कर सकेगा इहदी गुरबत दूर हो जाएगी। खबरे इसे वास्ते ही सेवा करदा होएगा कि कितों कुछ लभ जाए। उसने पेशकश कीती उस सिख नूं कहा भी ये पारस तूं लै लै। कहण लगा मेरे किसे कम नहीं मैनू वाहिगुरू अकाल पुरख ने बहुत कुछ दिता है गुरु दे उपदेश दे मुताबिक जिंदगी सबर सिदक नाल गुजर रही है सेवा विच नाम जपण विच कोई ढिल नहीं है दसा नवां दी किरत करदा हां। वो कहण लगा नहीं तेरा गुजारा तंग है मुश्किल नाल रोटी चलती है। कहण लगा चंगा फिर जे तुसी महापुरश हो इसी गल ते आए हो उन्हें कई मारी धरती ते टोआ कढ दिता छोटा जिहा आखण लगा इत्थे रख दिओ ते मिट्टी पाती। समा बीत गया साल दो साल लंघ गए ते साधु दे मन विच ख्याल आया भी चल के देखा ते सही भी उस बंदे नूं पारस दिता सी ते उत्थे तां महल खड़े होए होणगे नौकर चाकर होणगे सेवा करन लई। जिस वेले आया ते उहने वेख्या भी उह ते उसे तरह चल रहा कम उहने पुछिया आण के आखण लगा मेरा पारस। सिख कहण लगा मैनू तो याद भी नहीं उह ते जिथे दबिया सी उत्थे ही होएगा तू वरत्या नहीं। कहण लगा महापुरशो मैं तुहानू पहलो भी कहा सी कि मैनू इस वस्तु की जरूरत कोई नहीं मेरी जिंदगी गुरु पातशाह की सिख्या के मुताबिक बहुत वधिया गुजर रही है ते मैं किसे लालसा नू लैके कोई सेवा धर्म कर्म नहीं करदा। बड़ा हैरान होया आखण लगा मैनू अपने सतगुरु दे कोल लैके चलो। गुरु हर राय साहब की चरण शरण विच उस सिख ने लिया ते गुरदेव ने समझाया आखण लगे देखो तुसी बंदगी का रस्ता अख्तियार करके भी साधु बन के भी ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਸ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ। ਗੱਲ ਉਥੇ ਦੀ ਉਥੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਸਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੋ, ਪੈਸੇ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਆਉਣ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹਿਣਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਧਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਗੁਆਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਾ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਬੱਝਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿਚੋਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਨਿਰਾ ਧਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਧਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ। ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਮਾਲਕ ਵਿਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਚਾਕਰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿਚ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਹੁ ਕਰ ਪਕਰੀ ਨਾ ਆਈ ਹਾਥ, ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੀ ਚਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਥ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਆਗ ਦਈ ਤਬ ਉਹ ਚਰਣੀ ਆਏ ਪਈ, ਸੁਣ ਸੰਤੋ ਨਿਰਮਲ ਵਿਚਾਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਦਤ ਨਹੀਂ ਕਾਈ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਤ ਉਧਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰਾਹ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿੰਨੀ ਵਿਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ। ਐਸੀ ਯੁਕਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਕਿਤਨਾ ਆਵੇ, ਘੱਟ ਵੱਧ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਅੰਤਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਮੀਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁੰਝੀਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ। ਇਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿਮਾ

पूरन ब्रह्म ज्ञानी तू उन्हां नूं अपना गुरु बना। पर एक गल है कबीर, तू है जुलाया नीवी जात दा ते स्वामी जी उची जात दे। स्वामी जी ते जात पात नहीं देख दे, पर उन्हां दे चेलिया ने तैनू लाग नहीं लगन देना। ता कबीर साहब ने कहा, फिर मैं की करा। ता दसन वाले ने कहा, कबीर एक रस्ता है। स्वामी रामानंद रोज सवेरे उठ के गंगा ते इशनान करन जांदे ने। जेड़ियां पौड़ियां तू ओ इशनान करन वास्ते उतर दे ने, उन्हां पौड़ियां ते जा के लम्मा पै जा। गुरु दी लोड़ सी, रात पई, पर कबीर नू चैन किथे। मन तड़फदा कदू समा आवे के जदू मैं गुरु वाला बना। ओ वेला जा दुनिया दे लोग सौंदे नहीं,

होए बिरकत बनारसी रहंदा रामानंद गुसाई अमृत वेले उठ के जांदा गंगा नावन ताई ओ स्वामी रामानंद अमृत वेले उठ के गंगा ते इशनान करन जांदे ने क्योंकि रब दे प्यारे रात सौंके नहीं बतांदे।

अपना परना मोढ़े ते मारिया। गंगा घाट इशनान करन वास्ते तुर पए ने जदू स्वामी रामानंद गंगा घाट पहुंचे।

समा बीते। स्वामी रामानंद एक दिन इशनान करके अपने डेरे आए, ए मूर्ति पूजा नहीं सन करते। कमरे का बुआ बंद करके, अखां बंद करके, मन करके अपने ठाकुर नूं इशनान कराया करते सन। और एक दिन इशनान करारे ने ठाकुर नूं कपड़े पवाए, सिर ते मुकट रखिया। अचानक ख्याल आया मना, सिर ते मुकट पा दिता है, हार पाण दा ते ख्याल ही नहीं रहा। हार छोटा है, मुकट तो पै नहीं सकदा, मुकट लावां तां बेअदबी हुंदी है। जिवें असी किसे दे गल हार पाणा होवे, हार छोटा होवे, पग ला के गल विच हार नहीं पाईदा। इसे तरह स्वामी जी सोची पै गए, हार छोटा है, मुकट तो पै नहीं सकदा, जे हार ना पावां पूजा पूरी नहीं हुंदी। इन्ने नूं कन्नां विच इक आवाज पई, स्वामी जी हार छोटा है, गंढ खोल के हार दी, हार गल विच पा के फिर गंढ बन दे। बिरती खुल गई, स्वामी जी बाहर आए, बुआ खोलिया, बार की देखते नहीं, भगत कबीर साहब बैठे। स्वामी जी कहन लगे, ओए तू कौन है जिन्ने मेरे मन की गल जान ली? ते कबीर साहब कहंदे ने, स्वामी जी मैं आप दा सेवक कबीर हां, अमृत वेले गंगा दियां पौड़ियां ते सुता सां, तां तुसी कहा सी उठ राम के राम को, उदों दा आप दा सेवक बन गया। ते स्वामी रामानंद दियां अखां विच अथरू आ गए, मन पार आया, उन्हां कबीर नू बाहों फड़ के अपने गल नाल लगा लिया। ते नाले कहंदे ने, ओए कबीर तू हुण सेवक किथे, तू ते मेरे तू भी अगे लंघ गए। जिन्हें मन दी गल जान ली, ओ सेवक किथे, और सचमुच राम कबीरे भेद ना पाई। ए अमृत वेले जागण दा फल, के कबीर विच ते राम विच, उस वाहिगुरु विच।

फिर कपड़ा बहू दे तो ठाकर लै जा। गन्ना बड़े चाच कुमार के नाल पंडित जी निकल गया। पंडित जी ने तेल चो इंतजाम बन ले किले ते 10 किलो का बट्टा तने नु चुका दिता। हूं तन्ना बड़े अदब दे नाल शौक ते शौक दे नाल निम्रता दे नाल अदब दे नाल ठाकर सिर ते चक्या, सिर दे परने पिछे लपेट लिया, क्योंकि होर ते कोल कुछ भी नहीं सी, खेत वालों जा रहा सी। जाके ठाकर नु खूह चल रहा सी थले रख दिता। आखे ठाकर जी ए तरदोचंदा कर रही जिथे पानी की थोड़ है, ए जट्टा खूह है, सब कुछ इथे ही मिलेगा, ताजिया सब्जियां मिलनगियां, नहाने की बड़ी मौज है, वेखो खूह चल रहा है, आप ही हुण इशनान करो ते मैं नका मोड़ा मां मुक्ति गल। इशनान कराया, तन्ने ने मल मल के नका मोड़ के आ गया। हुण भगवान बाहर रख दिता है इतने चरनों, तन्ने दी करवाली आ गई प्रशादा लैके। बड़े ही प्यार दे नाल ठाकर नूं परने उत्ते रख दिता है। रुखा सुखा जोश ही एक कृति दे करों आ गया। तन्ने ने अर्ज कीती, भगवान जो गऊ सूई सी उह ते हुण आप जी दे बटांदे विच पंडित जी ने लै ले गए। हुण ते आपां जो कुछ भी करो रुखा सुखा आया है उही खाना है। फिर कोई बात नहीं, दो चार महीने तक दूसरी गऊ छूण वाली है, लहरां वहरां बन जावणगियां, आओ भोग लाओ। हुण उसने पता नहीं सी भोग लाउणा है कि खाना है। काफी समा बहन तो बाद उसने स्त्री नूं आख्या, तुसीं जाओ जी घर नूं, शायद ठाकर दी संगत ना होवण, तुसीं चले जावो, अज ठाकर नवा नवा आया है, साडे घर दे बारे तो जाणू नहीं। घर वाली तोड़ दित्ती। हुण तन्ना जोधड़ियां करदा है, अर्जना करदा है, भगवान खा लो प्रशादा, वेखो मैं भी कल शाम का ही भुखा हां, सवेर का मैं कुछ भी नहीं खादा, दिन ढाले पै गया है, शामा पै रही हैं, को राही राहे राहे जा रहा है। उसने सुनिया एक आदमी पत्थर के नाल गल्ला करता है, भगवान जी खाओ ना कुछ ना कुछ। उस आदमी नेड़े होकर सुनिया, वेख्या कौन है, ये तो तन्ना जट है। आखिया वो तन्या, पत्थर ने सुनते फरियाद किसी की, तन्या पत्थर ने सुनते फरियाद किसी की। तन्ने ने अखा खोली, आखिया जाओ जी जाओ, मेहनत नहीं जाती बर्बाद किसी की। हुण अगली शामा भी पै गई, तन्ना हुण आ गया है अपने जटपुणे ते, भगवान हुण तू मेरे वल देख ले, मेरिया आंदरा हुण भुखियां बिलक रहियां हन, हो सकता है तेनू पंडित ने कुछ तरोताजा चीज खुआई होवे, तेनू भुख नहीं लगती। जिस तरह दूसरे दिन का दोपहर आया, तन्ना बजट बचा गया, ऐ भगवान देख ले, मैं मर जाना है तो तेन मार देना है दात्री उठा ले। भगवान का सिंघासन डोल गया एक बंदे का विश्वास देख के, है ये बंदा अपने आप अपने करे की भी दाती मार देगा, लोग मेरी होन तो मुनकर हो जावणगे कि मैं नहीं हां। पत्थर के विचों हथ बाहर निकलिया, तन्ने ने आख्या इवें तो गल नहीं बननी, उप ठाकर जी पंडित के सामने साक्षात बैठ के रोटी खावे, ते जट नूं कल्ला हथ विखालता है।

ठाक ते सौ खाक दसो तुम ठाक नहीं दिसदा तनिया मैनू नहीं दिसदा सच आखते हो हां तनिया सच आखदा ठाकर जी तुसी मैनू दिसदे हो इसका मतलब तुसी तलोचन भी दिसदे होवोगे नहीं तनिया मैं भैड़िया अखां वाले नहीं दिसदा जिन्हां का मन होर भुख होर होवे मैं नहीं उन्हां नूं दिसदा फिर भगवान जे तू मेरे कोल रहना है तो फिर तेन तरलोचन दर्शन देने पैणगे तनिया नहीं यह झूठा है फरेबी है मकार है हेरा फेरी करता है मेरे नां ते नहीं प्रभु जे ए ना हुंदा तो मैनू तेरे दीदार नहीं सी होने हुण हुण भगवान नूं तन्ने दे कारण करके तरलोचन भी दर्शन देने पए तरलोचन का भी दर्जा भगतां विच आ गया किहदे करके किरती ने संगत की संगत का दर्जा की होया फिर तन्ने ने मंगिया कि ऐना कुछ मंगया कोई भी संसारी ऐना कुछ मंग नहीं सकिया एक ताजन तुरी चंगेरी करकी कहे चंगी जन तन ना ले दे मंगी पातशाह घोड़ी वह होवे जिहड़ी किसे कोल होवे बिस्तरा ऐदां दा होवे जिहड़ा बादशाह नूं नसीब ना होवे इस्त्री एडी खूबसूरत होवे जद रोटी लै

तेज अनेक सुख रस भोगन पूरे ग्रह सोहिन चंदन सुगंध ग्रह सोहिन चंदन सुगंध।

तो संस्कार मिल के पढ़िए और जतन करिए, जो गुरु ने सानू पूरने पा के दसे हैं कि प्यार किया गुरु ने साडे नाल, असी भी जतन करिए उन्हें प्यार करने। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। भाई शाह भाई गुरदास जी ने गुरसिख का गुरसिख नाल कितना प्यार होना चाहिए किवें दसिया? आख्या सिर उच्चा नीवे चरण सिर पैरी पांदी। एक बड़ा सुंदर सवाल है। सिर उच्चा है सब तो नीवे पैर हैं, भाई साहब कहेंगे ना फिर पैरों वाल सिर क्यों जाता? उन्हां कदमों की की खूबी की है? सारिया पैरों पर तो नहीं सिर झुक जाता। उच्चारण करो श्री साहब। सिर उच्चा नीवे चरण सिर पैरी पांदे, मूंह अखी नक कन हथ दे पार उचांदे, सारे चिन्ह उपर हन। मूंह अखी नक कन हथ दे पार उचांदे, हजूर कहिंदे न सब चिन्ह छड पूजियन। कदमां दी पूजा क्यों होंदी है? वो कौन कर्म कमांदे? वो कदम केड़ा कर्म करते हैं जिन्हों कदमों से बदो बदी सिर झुक जाता है? उच्चारण करो श्री। तो अगलियां टुकां विच भाई साहब जवाब दे रहे हैं। आप कहते हैं भाई वो कदम तां तनता दे योग हैं, गुर सरणी साध संगती नेत चल चल जा। गुरु के सिख दे कदम सतसंगत वल जान चंगे रहते हैं। अमृत वेले उठ के गुरु का सिख इशनान करता है ते फिर मुख तो जप रहा है श्री वाहिगुरु। किधर चले हो जी? मैं गुरुद्वारे चले। किदी सोहनी सुगंधी है, कितनी सोहनी शोभ है, क्योंकि पहली पौड़ी ही गुरसिखी की अमृत वेले जागना है। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने आकी पौजल बनी हुई सी, 10 लाख का फेरा सी। इतिहास में पढ़ो जदों आनंदपुर साहब का किला छड़िया ते एडे वड्डे पौजल विच भी उन्होंने अमृत वेला बिना कीर्तन दे नहीं बिताया। जदों अमृत वेले का समा होया, भाई दया सिंह साडा अमल टुट गया, गरीब नवाज समझ नहीं आई, अच्छा आशा दी वार दे कीर्तन का समा जा रहा है, ते उथे भी बह के आशा दी वार दा कीर्तन होया। हुण असी अपने अंदर चाती पाईए भई केड़ा सुख है जो वाहिगुरु ने सानू नहीं दिता, ते फिर इन्हें सुख प्राप्त करके भी असी उहदा शुकराना नहीं करते। उन्होंने तो सानू पूरने पाके दसे हन कि इतने पौजल विच भी गुरु के सिख ने अपना नितनेम त्यागना नहीं, ते असी एडिया सुखां विच रह के भी जे उहदा शुकराना नहीं करते तो फिर सिख कदे होए? उच्चारण करो श्री भाई। इसलिए आओ भाई, भाई साहब गुरदास जी पूरने पा रहे हैं कि अमृत वेले उठ के इशनान करके जो गुरु के दरबार जाते हैं, भाई गुरदास जी कहते हैं उन्होंने कह दियो जेड़े जोड़े उन्हें पहने हैं वह उतार देन, पता नहीं किस चमड़े के हैं, आ मेरे तन दे चमड़े दे जोड़े बनवा के उन्होंने पहना दो। उच्चारण करो श्री भाई। गुर शरणी साध संगति नित चल चल जाते, वतन पर पुकार कर पार वसाने, मेरी खलो मौजरे गुर सिखांडा। तो भाई इतनी निम्रता गुरु घर विच है, परस पर आपस विच प्यार करिए, जदों भी मिलिए फतेह बुलाइए वाहिगुरु जी का। हजूर का वचन है जेड़ा पहला फतेह बुलावेगा मेरा मुख उस वल होगा। उच्चारण करो श्री भाई। होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करो लिवलाए, हर नामे की होवो जोरी, गुरमुख बैठो सफा विषय। आज जुड़े बैठे हो, हजूर कह रहे हैं सही सुंदर सोहने साध संगत जो बहने, गुरु नूं कोई सुंदर लगते हैं चंगे लगते हैं जो सतसंगत बह के जपते हैं श्री वाह। तो धन गुरु ग्रंथ साहब जी का
ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਇਹ ਦੀਦਾਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਬਰਕਤਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਜੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉੱਥੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਲਖਮੀ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵਈ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਹਨ, ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਹਨ, ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਵਧਦੀ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਰਥ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਲਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀ ਆ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਥ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਆਪ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਦ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇਗੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਤ ਸੰਗਤ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਸ ਕਰੀਏ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ, ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ। ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੌਰ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।

है ता तेरा जीवन अधूरा है। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी बख्शिश कर रहे हैं, बिन संगत ऐसे समझो जैसे पशु ढोर।

बहन, ये पल दी खबर नहीं, अहंकार कर रहे हैं। इसे हजूर कहते तन जोबन का गर्भ ना कीजे, कागद ज्यों गल जाएगा। पता नहीं अगला पल किहो जिहा आ रहा है। धन गुरु नानक पातशाह संसार नूं तारदे होए एक नगर दे बाहर जा बैठे, वेख्या के सारे लोग बड़े खुशियां मना रहे हैं, ते झट बाद वेख्या के रोना पिटना पै गया। इत्थे मर्दानिया आ हुणे तां खुशियां मना रहे सन, ते हुण वैन पै रहे हन। जाके पता करके आ, मर्दाना जदों गया पता करके आया तां आख्या गरीब नवाज सच्चे पातशाह, एक सेठ दे घर लड़का होया सी। बड़ी मुद्दत ते बाद औलाद होण दे कारण सारा नगर बड़ियां खुशियां मना रहा सी, पर अकाल पुरख वाहिगुरु दी नेत नाल ए लड़का शरीर छड़ गया, ते ओदे विंजोग विच हुण रो रहे हन। मर्दानिया ए संसार है ही दुख सुख दा एक नगर है, इत्थे पता नहीं लगदा। जिस तरह समुंदर विच बेड़ा जा रहा है, पता नहीं किथे तूफान आ जाना है, किथे शलां उठ पैनियां हन, किथे शांत हो जाना है। ए साडा जीवन भी ऐसा है, पर प्यारी साध संगत जो गुरु की बाणी सानू बख्शिश कर दी है कि भाई राज भाग दुनिया देश धन दौलत विच सुख नहीं हन, सुख तां हरि दे सिमरन विच है। सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। जिना हरि दा सिमरन कीता सुखी तां ओ हन। कितने राजे महाराजे चक्रवर्ती पातशाह संसार तो चले गए हन, ते भाई नाम किना दा रह गया जिना ने हरि सिमरन कीता। धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज क्या करदे सन कि इस धरती ते इतने राजे महाराजे वजीर हो चुके हन, जदों असी एक कदम रखदे हां तां एक राजे दे सिर ते दूसरा वजीर दे सिर ते रखदे हां। इतने राजे महाराजे चक्रवर्ती पातशाह हो चुके हन, पर अज नाम किना दा अमर है जिन्हां ने जपया है श्री वाहिगुरु। तो इसलिए हजूर कहंदे हन भाई पता नहीं अगला पल किहो जिहा आवेगा, इसलिए जप जप के इना श्वासा नूं सफल कर लै। तेरा संसार ते आउणा भी ते संसार तो जाना भी धनता दे योग।

तनते छिटकी अपनी धारी प्रभ की आग्या लगी प्यारी। जो किस करे सो मन मेरे मीठा ताए अचरज नैनो डीठा। जदों ऐसी दशा सी ना एक महापुरुष कहिंदे उदों अकाल पुरख ने दर्शन दिते महाराज ने कहिंदे गोबिंद सिंह बेटा क्योंकि आप मैं अपना सुत तोहे निवाजा पुत्र बना के जो भेजा सी जी। कहिंदे बेटा गोबिंद सिंह तू इम्तिहाना विचो पास हो गया है प्यार ना आखो सतनाम सिंह मैं प्रसन्न हां मैं खुश हां ते कुछ मंग लै। आनंदपुर चाहिए ना जी पुत्र चाहिए कुछ नहीं चाहिए ते की चाहिए है ते साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज अकाल पुरख नूं कहिंदे ने जे त्रुठे हो मेरां दे घर विच आए हो जे बख्शां दे घर विच आए हो ना तां ए चीज दिओ जी।